धोती वस्त्र कपाट जय जान ब्रह्म कर्म सफो कंडो कर्म कौ नानक निचो त्याव बिन सतगुरु वाट न पावे पौड़ कपड़ रूप सुहावना छड़ दिनिंदर जावना मंदा चंगा।

हे प्राण नाथ गोविंद हे कृपा निधान जगद्गुरु, हे संसार ताप हरण है करुणा मैं सब दुख हरो, हे शरण जोग दयाल है दीना नाथ मया करो। शरीर स्वस्थ खीण समय स्मरंत नानक राम दमोदर माधव है। हम अवगुण परे एक गुण नाही,

सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुने ओ गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की,

दुख लगे घर घर फिरै अगे दूनी मिलै सजाए सतगुर मिलै भुख गई पेखी भुख ना जाए।

हर तत् ना खोइए नित जपयो हर हर दिन सरात हर दरगाह ढोइए सो पाए पूरा सतगुरु जिस तुर मस्तक लेलाट लिखोइए।

0: नित जपे हो कहिंदे नेता प्रति उहनूं जपना हर हर दिन सरात दिन अते रात अकाल पुरख नूं हर दरगा टोई है फिर उहदी दर ते की मिल जांदी टोई मिल जांदी उहदे दर ते सो पाए पूरा सतगुरु कहिंदे उह पूरे गुरु नूं हासिल कर लैंदा जिस धुर मस्तक ललाट जिहदे मस्तक दे कर्म चंगे होण तिस गुर कौ सब नमस्कार करो कहिंदे उस गुरु नूं सारे नमस्कार करो उहदे अगे ना नमस्कार करदे हां शीस नवाउंदे हां अपना आपा उहदे अगे समर्पित करदे हां जिन हर की हर गाल गलोई है कहिंदे जिन्ने सानू अकाल पुरख दे घर दीआं बातां दसियां ने घर दीआं गल्लां जिन्ने सानू दसियां ने उस गुरु अगे फिर सारे नमस्कार करो जिहड़ा अकाल पुरख परमेश्वर दीआं बातां सानू समझाउंदा है। इस तरह जी सतगुरु अज दी श्लोक और पौड़ी राही सानू समत बख्शदे ने। मालक ने इहदे विच समझाया इही है भेख छड के सच विच रहना सिख लईए सच विच रहिंदे आ सच विच समा जाइए तां जो साडे भी इह लोक सुखीए पर लोक सोहेले नानक हर प्रभ आपे मेले होईआं भुल्लां दी खिमा बख्शणी। आओ गुरु बाबा जी के पावन बचन हिरदयां विच वसा लईए।
1: सो पाए पूरा सतगुरु जिस तुर मस्त

जी आप जी ने अमृत वेले तो खुले दर्शन दारे बख्शे आप जी दे पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब विखे अमृत वेले दे गुरमत दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना अंदर आसा जी दीवार दे शब्द कीर्तन गुरबाणी लड़ी वार कथा विचार छे पौड़ियां आनंद साहिब जी दे जाप होए बाणी पढ़दिया सेवा संभाल करदिया हजूरी अंदर विचरदिया अनेक प्रकार दिया भुलां गलतियां हो जांदियां ने अखर वाधा घाटा भुल चुक माफ करनी अगां तो समत बख्शनी दारे आई हुई संगत।

अमृत छाड़ बिखे बिखाही माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई।

एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास रखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास रखो शरणाई।

0: को सिमरै तिन निर्मल रीता,
1: प्रभु को सिमरै तिन आनंद घनेरे, प्रभु को सिमरै बस्या अर नेरे,
0: संत कृपा ते आनंद न जाग।

0: हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहज समानी
1: प्रभ कै सिमरन अचल आसन प्रभ कै सिमरन कमल विगासन
0: प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार।

0: जपत निस्तर
1: कनक माया रंग तिकनम बजावे हर का नाम जपते अगावे
0: मार्ग जात अकेला ते हर नाम संग हो सुहेला
1: ऐसा नाम सत ये नानक गुरमुख प्रमगत पाइये
0: नहीं कोट लख बाही नाम जपत तै पार पर।

0: अंत दिन रात हर हर अवखद साध कमा
1: अर्जुन की हर नाम निदान पर ब्रह्म जन की नो दान
0: मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन के बिरत विवेक
1: हर नाम जन को मुख जुगत हर के नाम जन को त्रिपद भुगत
0: नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब पर न भंग।

0: न हो
1: की बस्ती सागर रखे प्रभु की आज्ञा मन माथे
0: चौगुन करे निहाल नानक सर सदा दया
1: अनेक बात माया के हेत सर्प।

0: ज्यो किरपन के निरारत दान
1: तन तन ते जन जय कट बस्यो हर नाव नानक काके बर बर जाओ
0: रहत अवर कछ अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखुं गंड लावत
1: जानन हार प्रभु प्रवीण बार बेक न कहूं पीरा
0: उपदेश आप न करे आवत जावत जन में मरे
1: के अंतर बसे निरंकार।

0: ठाकुर को रख मन माहे
1: संत लावे किसको सिमरत संगत पावे
0: प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे ध्याय सदा मन अंदर
1: संत सुख बसनाया पैर सिमरो तिस रसना
0: प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याय ध्यान जो
1: प्रसाद ब्रह्मांडागत अमर लबावे
0: प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैर ताका जस गावे
1: प्रसाद सबको मन मुक्ता को

0: मह कमल अले
1: ब्रह्म ज्ञानी स्वर्णलोक जैसे सुर सर्व को सो
0: ज्ञानी के दृष्टि समान जैसे राज रंग को लागे तुल्प
1: मान ज्ञानी के बीच एक जो बस्ता को खुद को चंदन ले
0: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक जो पावक का सहज
1: सुभाव ज्ञानी निर्मल के निर्मला जैसे मैल न लागे जला
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए परगाज जैसे धरु पर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्रस्तर समान ब्रह्म ज्ञानी के नय
0: भवा ब्रह्म ज्ञानी उच्च ते ऊंचा मन अपना।

0: ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार महा
1: ज्ञानी के नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी लेतावत बंदा
0: ब्रह्म ज्ञानी के होए सुभला ब्रह्म ज्ञानी सुफल।

0: पैदा कर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर।
1: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने।
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार।
1: ब्रह्म ज्ञानी सशिष्ट करता, ब्रह्म ज्ञानी सजीवे नहीं मरता।
0: ब्रह्म ज्ञानी मुकत जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूरन पूरक विधा।

0: लोक उस्तद करे अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहुविधि अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी
1: कई कोट बैठी रखवासी कई कोट ब्रह्म उदासी
0: कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीश्वर हो।

0: कीट हस्त पतंग होए जिया अनक जोन भर में भरमिया।
1: नाना रूप जो स्वंग गीत खावे जो प्रभावित में नचावे।
0: किस भावे सोई होए नानक दूजा अवर न कोई।
1: सत्संग ते पावे सो शांति बोर न आवे।
0: अंतर होए ज्ञान परगास उस स्थान का नहीं बिना।
1: मंथन नाम रतिक रंग सदा बसी पारम कह संग।
0: जल में जल आए खटाना तो

0: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागे कोए।
1: उस मन में कनंकार कर्म मेरे सब व्यवहार
0: निर्मल रसना अमृत पियो सदा सो।

0: जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाए
1: राम नाम जो करे विचार से तनवंत गणि संसार
0: मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानु ते सुखी
1: एको एक बचन नेत दुखी ओ सो जी जाने
0: नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्हें निरंजन जाने
1: गुर प्रसाद अपने आप सुजय तिसकी जानो तृष्णा बुझे
0: संग हर हर जस का

0: अलहार अष्टपदी
1: टूटी गार्डन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल
0: सगल चिंता जिस मन माए किसते बिरथा कोई ना
1: हे मन मेरे सदा हर जाप अब नासी प्रवापे
0: अपन की अक चिन्ह होए जिस प्राणी लोचे कोई
1: जिस बिन नाही तेरे किछ काम गत नानक जब एक हर
0: नाम रूबन तोय नाही मोए प्रभु की जो सगल कट सो है।

0: तिसका मंत्र न जाने हो।
1: अनदरो मंगल सज्जा के सरथो सुनिए घर ताके।
0: राज में राजयोग में जोगी, तम में तपिसर ग्रस्त में भोगी।
1: जय

0: प्रभवनासी एकंकार
1: नाना चलत करे किन माए पूरे ओ पूरन सब ताए
0: नाना विद कर बण तो बनाई अपनी कीमत आपे पाई
1: सब गर्त इसके सब तिसके ठाओ जब जब जीव

0: का सेवक नाम कह रंग
1: सेवक को पपरण हारा सेवक की रक्षण रंकारा
0: सो सेवक जिस दया प्रभ धारे नानक सो सेवक साथ साथ समारे
1: प्रदाता के अपने सेवक की सर पर रखे
0: अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई
1: अपने सेवक की अपद रखे काकी गज में कोई न रखे
0: सेवको को ना पहुँचे प्रभ के सेवक ऊँचे ऊँचे
1: अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक
0: की गिरी में कल रख है भसम करे लश्कर कोट
1: लाख
0: मानस जतन करत बहु भात तिसके कर

0: सतगुरु हृदय अरनाओ अनक बार गुर को बल जाओ।
1: सर्व निधान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राजा,
0: ब्रह्म धन जन में पार ब्रह्म इक्के आप नहीं कच भरम।
1: है स्यान पलया न जाइए नानक ऐसा गुर बड़ भागी,
0: पर सचन

0: कीमत किने न पाए
1: बल बंधन नित करे तन कम हृदय सिमरे
0: बलिहारी सतगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु
1: पावे दिन कोई।

0: अंजनामल करो विचार एक स्मरण नाम धारो
1: अवर उपासन मीत विचारो चरण कमल रिज मैं उद्धारो
0: कर्ण कांसो प्र समर्थ जक गौनाम रवत्थ
1: हे दर्शन चो हो भगवंत संजना का निर्मल मंत
0: एक आसरा को मन माय ना सर्व रोग नानक मिट जाहि
1: जिसन को चार कुंड उड़दावे सो धन हर सेवा ते पावे
0: जिस कुण बाछे मी सो सुख साधु संग परी
1: जिसो बाको करे बलि करनी सासो बाबा हर की सरनी
0: को पावी रोग न जाए रोग मिटे रब खदलाए
1: शरण निधान में।

0: भई सतगुरु ते निर्मल मत
1: जन को प्रभु दयाल सेवक इनो स्वा निहाल
0: जन कात मुकत जन भया जन मरण दुख भ्रम
1: एक पुनि श्रद्धा सपुरी रवरिया सत्संग जुरी
0: का साथ दिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम
1: शोक विसरज कर्ण बने शोक विसरज किया जाने
0: शोक विसरज जिन सब किछ दिया शोक विसरज जीवन
1: शोक विसरज अगर मैं राखे गुर प्रसाद को बिल्ला लाखे
0: शोक विसरज बिते काढ़ जन्म जन्म का

0: कर्त प्रतपाल
1: पुर कारण करतार भगत जना के प्राण
0: जो जो जपे सो होए पनीत भगत पाए लावे मन ही
1: निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पूरक भगवान
0: सर्व कुंड मुक्त मोक पाए किनम खर के गुण गा
1: अनेक राज भोग बदियाई हर के नाम की कथा मन
0: ओ भोजन का प्रसंगी रसना जपती हर हर नीत
1: करनी शोभा धनवंत हृदय बसे पूरन गुरु।

0: जब आपे आप अपनी जोत हर तब कमन निडर कमन कर
1: ठाकुर
0: आपन आसन ते जन्म मरण को कहा बिना
1: जब पूर्ण करता प्रसोए तब जम की
0: अभिगत अगोचर प्रभु एका तब चित्र गुप्त किस पूछे।

0: तब कवन माय बामितर सुध
1: जय सर्वकलापे परवीनता वेद कते महाकोचीनो
0: जब अपन आप उद्धार है तो सगन सगन कहाँ विचार
1: है अपन अपने अपने रास कुंठा कर कुन कहिए चेरा
0: विषम रहे विषम।

0: आप कतिया सुनिहार आपे एक आविष्कार
1: जाति भावेता श्रेष्ठ उपाय अपने बाने लए समाए
0: सुनते बिन नहीं कुछ होए अपन सुसव जगत परोए
1: जाको प्रभ जो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए
0: सो समदसी तत का वेता नान सगल सिष्ट का जित।

0: रे दयाल सब प्रभोवत कृपा
1: अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जमी रे व्याप
0: परत पाले जीवन भोपान जो जो रचे सो तसे
1: त्या जिस भावे तिस लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए
0: मन अंतर विश्वास कर मान्या करनहार नानक एक जानिया
1: लगार एक लाए तिसकी आस न बिथी जाए
0: सेवा को सेवा बनाई हुक्म बूझ परम पद पाई।

0: अमृत बदन हर के गुण गाओ प्राण तरण काय स्वाओ सुन मद हृदय बसाव मन छे नानक फल
1: पाओ राम नाम अंतर उधार
0: पूरे गुरु की पूरी दीखिया जिस मन बसे तिस साच परिखिया
1: नाम जपो निभलाए दुख।

0: सकल को मिटाए प्रभु कृपा से प्राणी छुटाए।
1: प्रभु राखत सुनाई दुख नाम जब मन हो वस्तु
0: चिंता जाए मिटे अहंकार ते जन को कोई न पहुंचन हार।
1: श्री ऊपर

0: सुन है शुभ वचन सर्वव्यापी राम संग
1: इन जाता किए रह सत वचन साधु सबके
0: जो जो होए सोई सुख मान्य करन करावन हार प्रभु
1: अंतर बसे बार पी हो नानक दर्शन देख सम
0: आप सत किया सब सत तिस प्रभु ते।

गुरु ग्रीब नवाज दीन अर दुनी दे मालक सर्वरे कायनात दे सांझ रहबर गुरुआं के गुरु पीरां दे पीर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी तिन्हां दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पावन स्थाना उपर हफ्तावारी नाम सिमरन अभ्यास समागमां दे अंदर जुड़ मिल बैठे गुरु प्यार वालेओ सतगुरु जी ने बड़ी अपार बख्शिश कृपा वरताई है। जो अपने पावन चरना कमलां पास जुड़ के बैठन दा सुभाग सतगुरु गुरु बाबा जी ने बख्शिया है। आओ गुरु प्यारियो, जो इन्हां हफ्तावारी समागमां दे अंदर सुखमनी साहिब जी की पावन बाणी दीआं लड़ीवार विचारां चल रहीआं ने, उन्हां चल रहीआं लड़ीवार विचारां दे नाल सांझ पाईए। विचारां आरंभण तों पहलां सतगुरु कृपा करन, रहमत भरिया हथ सर ते रखण और आप सरबत संगत असीस बख्शो, गुरु बख्शी फतेह प्रवान करवा खुदी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

श्री सुखमनी साहिब जिया दे जाप कथा विचारा से पौड़िया आनंद साहब जी के पाठ की अरदास है जी। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी आप जिया दे दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल पेटावा दर प्रवान करनिया यात्रावां सफल करनिया दरों।

आप जिया दे हजूर पवित्र कड़ा प्रसाद जी देख सज के हाजिर है धर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद समूह साध संगत विच वरताउन दी आग्या बख्शो जो जी सके आप जिया दा पवित्र नाम सतनाम श्री वाहे गुरु जपे आप जी करो कृपा अपनी अमृतमयी बाणी विचों पावन पवित्र हुक्म दी दात बख्शो हुक्म अनुसार जीवन जीउण दी समर्था बख्शो अखर वादा

चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दा पला। दोहरा आ गया पई अकाल की, सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी माने ओ, जो प्रभु को मिल बोच है।

गुरमत मेरा प्राण सखाई हर कीर्त हमरी लहरा सुरहाऊ हर जन के बड़ भाग बड़े।

जिन हर हर हर नाम न पाया ति भागी जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत

गुर प्रसाद परम पद पाया सुके काष्ट हरिया रहाउ जनन पिता लोक सुत बनता।

भई परापत मानख दे होरिया गोविंद मिल की ए तेरी वरिया अवर काज तेरे किते न काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग पौजल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहा जप तप

हमारा जवन काल सुजक्त बनायो देव दैत जसन उपजायो आद अंत के अवतारा सोई गुरु समझे हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जनु आप सवारी सेवकन को सगुन सुख दियो सतरन को पल मवद कियो कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पसानत चीटी ते कुंचर स्थूला सापर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पसान कट कट के पट पट की जान जबोद करख क

धारो वाजे पंसावतित करस पागे करस पागे शब्द वाजे कला जित करतारिया पंच दूत दवस कीते काल कंटक मारे आतुर करम पाए।

एवं तन मन थीव हरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर।

उचेते उच सगल समग्री तुमरे तुमते हो ऐसो तुमरी गत मित नानक दास बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री

दर्शन स्नान चौंकियां चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मानी वा मत ऊची मत पत दा राखा वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तों खालसा पंथ नूं

उदर है रास सब जी के पाठ की अरदास है जी। अखरवादा घाटा भुल चुक माफ करनी आप जिया दे दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल पेटा बांदर प्रवान करनी आ यात्रावां सफल करनी आ।

हमें अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाही, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निरपो निर्वैरो अकाल मूरत अजुनी सैभं गुरु प्रसाद

जुग जुग अटल चवर शतर तखत दे मालक गुरुआं के गुरु पीरां दे पीर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी तन्नां दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पावन स्थाना उपर रात्रि वेले दे दीवाना अंदर जुड़ मिल बैठे गुरु प्यारे हो सतगुरु जी ने बड़ा तरस कीता है अपने पावन चरणा कमलां पास जुड़ के बैठन दा सुभाग समा गुरु बाबा जी ने बख्शिया है। आओ गुरु प्यार वालिओ जिथे गुरबाणी कीर्तन गुरु के कीर्तनियां पासों सरवण करदे आं बाणी दा रस माण रहे सां जो लड़ीवार गुरु इतिहास दियां विचारां रोजाना आप संगतां इन्हां पावन स्थानां तों सरवण करदियां हो वो चल रही लड़ीवार गुर इतिहास दियां विचारां नाल सांझ पाईए। कल दे दीवाना अंदर आपां इत्थों तक इतिहास विचारां सांझियां कीतियां सन कि धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने कलमोटा नगर नूं मारन तों मगरों आनंदपुर साहब जी आण दी विचार प्रगट कीती। गुरु के सिखां ने खालसे पंथ ने भी इच्छा प्रगटाई भी सतगुरु आपां आनंदपुर साहब जाके टिकदे हां। गुरु बाबा जी पेंडा तय करदिआं आनंदपुर साहब की धरती ते पहुंचे रस्ते विच मिलण वाले सलामी गुरु साहब नूं नमस्कारी होके मिले मालक दे चरणां ते नमस्कारां करदे कुछ ऐसे भी मिले जिहड़े उत्थे भी विच इच्छा ए तार के बैठे भी असीं गुरु साहब दे नाल मत्था लाउणा है ते उह जिन्ने भी मत्था लाउण वाले मिले उह सारे अपना आपा गवा लैंदे ने। धन गुरु कलगीधर साहब आनंदपुर साहब पहुंचे संगतां नूं सिखां नूं हुक्म कीता आनंदपुर साहब की धरती ते आउण दा मुड़ वसेबे दा नगर वसाया। सतगुरु पातशाह ने बहुत सुंदर फिर मतलब उदू भी वधीक रूप च विशाल रूप च बाजार तैयार करवाए गुरु साहब ने। फिर नगर के द्वारे द्वारे बगीचे लगवाए जिन्हां बगीचों के अंदर फुलदार और फलदार बूटियां का प्रबंध सतगुरु कलगीधर साहब करवाउंदे ने और मालिक पातशाह जी दे कोल उत्थे आके हर तरह का मनुख वसेबा करदा है। आनंदपुर साहब की धरती दे उत्ते बहुत गिणती जिहड़ी उह सिखां दी वध जांदी है। इत्थों तक इतिहास आपां कल दे दीवाना अंदर सांझा कीता सी। आओ गुरु प्यारिओ अगाह होण क्योंकि सतगुरु जी मुड़ आनंदपुर साहब की धरती ते आके वसे ने ते गुरु पातशाह जी का मुड़ आनंदपुर साहब की धरती ते आउणा पहाड़ी राजिआं नूं किवें लगदा है और वह किहड़ियां व्यौंतबंदियां ने जिहड़ियां दुबारा फिर करदे ने। आओ आपां इतिहास ते अगलेरे पन्नियां नूं विचारन दा यतन करिए। विचारां आरंभण तो पहला सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब कृपा करन अपना रहमत भरिया हथ सिर ते रखन सतगुरु आप रसना नूं बल बख्शन। गुरु पातशाह रसना नूं रस बख्शन और आप सरबत संगत असीस बख्शो। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आई। फिर अंकद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईए जिस जुठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निदा बिताए। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए।

चितावन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रसिया रियायत देख तेख फतेह। बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी साई खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दान सरदान नाम दान श्री अमृत सर जिया दे दर्शन स्नान। चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मनी वा मत उची मत पत दा राखा वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारिया गुरुतामां दे जिन्हां तों खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दसन दे दार।

0: कवन उपमा देओ, कवन सेवा सरयो, एक मुख रसना रसो जुग जोर कर। फुन मन बच क्रम जान, अनत दूजा नामान, नाम सो अपार सार, दिनो गुर रिद तार। नल काव पारस परस, काच कंच ना होए, चंदना सो बास जास, सिमरत अनतर। जाके देखत द्वारे, काम क्रोध ही निवारे, जी हो बल बल जाओ, सतगुर साचे नाम पर। राज जोग तखत दियन गुर रामदास, प्रथमे नानक चंद जगत भयो आनंद। तारन मनुख जन कियो परगास, गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान। पंच पूत बस कीने जमत ना तरास, गुर अमर गुरु श्री सत कलयुग राखी पत। अगन देखत गत चरण कवल जास, सब विद मान्यो मन तब ही भयो प्रसन्न। राज जोग तखत दियन गुर रामदास, रड जिसे तारियो तरत अरव्यूम, ते जिसे तारियो तरत अरव्यूम, ते पवन जिसे तारियो तरत अरव्यूम, ते पवन अर पवन ते नीर सर, अवर अनल अनाद कियो। सास रिख निस सूर दिन सैल, तरु फल फूल दियो। सुरनर सपत समुद्र कै तारियो त्रिभवन जास, सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास।
1: कच्चो कंचन पयो शब्द गुर श्रवण सुनयो, बिखते अमृत होयो।

करे, ज्ञान गुर कहो बिचारे, काठो श्री खंड सत गुर कियो, दुख दर दर तिन के गए, सत गुरु चरण जिन परसया, से पस परे सुर नर पए, जाम गुरु होए वाल तने क्या गर्व दीजे, जाम गुरु होए वाल लख बाहे क्या कीजे, जाम गुरु होए वाल

समर्थ गुरु सिर हाथ धरयो गुरु कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरयो निस्वासुर ए

पारस पेट परस करियो, रामदास गुरु हर सत कियो, समरथ गुरु सिर हाथ तरियो।

अमृत परवा छुटकांत सद द्वार जिस ज्ञान गोर बिमल सार संत सिख नाई है नाम निर्भान निदान हर उर तरो।

किंकनी शब्द चनतकार खेल पहे जियो, काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सके, ईसबम ज्ञान त्यान तरत ही है चाहे जियो, सत साच श्री निवास आ

0: अकाल मूर्ति अजुनी सह पंगर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे अस राजा की धुनी श्लोक महला पहला
1: बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सद

उस्माद नाद उस्माद विद उस्माद जीव उस्माद भेद उस्माद रूप उस्माद रंग उस्माद नंग फ्रिखे जन उस्माद पाउण उस्माद पानी उस्माद अग्नि खेडे विडाने उस्माद धरती उस्माद खानी उस्माद साध लगे प्राणी उस्माद संजोग उस्माद गुंजोग उस्माद पख उस्माद भोग उस्माद सिवत उस्माद सलाह उस्माद जड़ उस्माद राह

वह सदवाओ पैव चल हिलक दरियाओ पैव जगन कडवे गाद पैव तत्ती दबी पाद पैव विच इंद फिरे सर पार पैव च राजा धर्म द्वार।